0: thought about subscribing to 2XX? Subscribing is a really easy way to show your support for the station. With your help, we can continue to bring you over 100 hours of quality content every week. Your contribution will make a real difference. Subscribe or donate by visiting our website at 2xxfm.org.au. Thank you.
1: आप जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर इक्विटी मैटर्स सुन रहे थे। पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर शाम के 7 बज रहे हैं। रेडियो हार्मनी पर मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता।
2: दिस इज हार्मनी।

0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, सरस्वती पूजा 17 अक्टूबर को है। आज हम देवी सरस्वती की वंदना के साथ हार्मनी की शुरुआत कर रहे हैं।

माता सरस्वती शारदा, ये भजन गाया था लता मंगेशकर और दिलराज कौर ने। इसको संगीतबद्ध किया जयदेव ने। मित्रों, इस महीने की कुछ तिथियां इस तरह से हैं, 16 को स्कंद षष्ठी, 17 को सरस्वती पूजन, 19 का दुर्गाष्टमी और महानवमी और सरस्वती विसर्जन, 20 को विजयदशमी और दशहरा, और बंगाल में महानवमी और दक्षिण में सरस्वती पूजा। बुद्ध जयंती भी 20 अक्टूबर की है। 25 को शरद पूर्णिमा, 26 का वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती, 29 को करवा चौथ। मित्रों, आज हम सर क्लिफ रिचर्ड, जो कि बड़े पुराने और जबरदस्त संगीतकार माने गए हैं इंग्लिश सॉन्ग्स के, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर सन 1940 को, तो आज हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं। एंड वी विल प्ले सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस इंग्लिश सॉन्ग्स। सर क्लिफ रिचर्ड्स, जिनका जन्म का नाम था हैरी रॉजर वेब, इनका जन्म हुआ 14 अक्टूबर 1940। ये एक ब्रिटिश गायक और अभिनेता हैं। यूनाइटेड किंगडम में उनके सिंगल्स की कुल बिक्री 21.5 मिलियन से ज्यादा है, और 2026 तक वे यूके सिंगल्स चार्ट के इतिहास में बीटल्स और एल्विस प्रेस्ली के बाद तीसरे सबसे ज्यादा बिकने वाले कलाकार हैं। शुरुआत में सर रिचर्ड को प्रेस्ली और लिटिल रिचर्ड की तरह एक बागी रॉक एंड रोल गायक के तौर पर पेश किया गया था। अपने बैंकिंग ग्रुप द शैडोज के साथ उन्होंने 1950 के दशक के आखिर से 1960 के दशक की शुरुआत तक, यानी बीटल्स के दौर से पहले, ब्रिटिश पॉप संगीत की दुनिया पर राज किया। 1958 में आया उनका हिट सिंगल मूव इट, अक्सर ब्रिटेन का पहला असली रॉक एंड रोल गाना माना जाता है।

Yet her Cliff Richard and the Shadows Move It. From the Cliff Richard Show on 19th of March 1960. फिल्मों में उनका करियर सफल रहा जिनमें एक्सप्रेसो बोंगो 1959, द यंग वंस 1961, समर हॉलिडे 1963 और वंडरफुल लाइफ 1964 शामिल हैं। साथ ही बीबीसी टेलीविजन पर उनका अपना शो भी था। ईसाई धर्म में उनकी बढ़ती आस्था और उसके बाद उनके संगीत में आए नरमपन की वजह से उनकी छवि एक आम या मिडिल ऑफ द रोड कलाकार की बन गई और उन्होंने कभी कभी समकालीन ईसाई संगीत में भी हाथ आजमाया। 65 साल से ज्यादा लंबे करियर में रिचर्ड ने कई गोल्ड और प्लैटिनम डिस्क और अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें 2 आइवर नोवेलो अवार्ड और 3 ब्रिट अवार्ड्स शामिल हैं। उनके 130 से ज्यादा सिंगल्स, एल्बम और ईपी यूके टॉप 20 में पहुंचे हैं, जो किसी भी अन्य कलाकार से ज्यादा हैं। रिचर्ड के 67 सिंगल्स यूके टॉप 10 में रहे हैं, जो किसी कलाकार के लिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या है प्रेस्ली के बाद। प्रेस्ली के साथ उनके नाम या रिकॉर्ड हैं कि वे एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिनके सिंगल्स लगातार 6 दशकों 1950 से सन 2000 के दशक तक यूके सिंगल्स चार्ट में जगह बना पाए। उन्होंने यूके में 14 नंबर एक सिंगल्स दिए हैं और वे एकमात्र ऐसे गायक हैं जिनका यूके में लगातार 5 दशकों तक नंबर एक सिंगल रहा है। उनके 4 यूके क्रिसमस नंबर एक सिंगल्स भी रहे हैं, जिनमें से 2 सोलो कलाकार के तौर पर थे, मिसल्टो एंड वाइन और सेवियर्स डे। आइए ये दोनों अवार्ड विनिंग नंबर्स हम एक के बाद एक सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं मिसल्टो एंड वाइन और उसके बाद सेवियर्स डे।

1990 के दशक के आखिर तक रिचर्ड दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड्स बेच चुके थे, जिससे वे अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बेचने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट में से एक बन गए। अमेरिका में 8 गाने टॉप 40 में जगह बनाने के बावजूद, जिनमें 10 लाख से ज्यादा बिकने वाले डेविल वुमन और वी डोंट टॉक एनीमोर शामिल हैं, उन्हें वहां वैसे लोकप्रियता नहीं मिली। तो ये जो दो गाने हैं, डेविल वुमन एंड वी डोंट टॉक एनीमोर, आइए इन्हें भी एक के बाद एक सुन लेते हैं।

कनाडा में 1960 के दशक की शुरुआत, 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में उनका दौर सफल रहा और उनके कुछ रिलीज को गोल्ड और प्लैटिनम सर्टिफिकेशंस मिले। वे अपने देश यूके के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी यूरोप और एशिया में भी म्यूजिक, फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में लोकप्रिय रहे हैं और दूसरे देशों में भी उनके चाहने वाले हैं। जब वे टूर पर नहीं होते तो अपना समय बारबाडोस और पुर्तगाल में बिताते हैं। सन 2019 में वे न्यूयॉर्क चले गए। आइए उनके दो और बेहतरीन गाने सुन लेते हैं, बैचलर बॉय एंड थीम फॉर ए ड्रीम।

तो मित्रों, आज हमने सर क्लिफ रिचर्ड के जन्मदिन का ये एक खास पेशकश आपको दी। उम्मीद है इनके ये पुराने गीत आपको पसंद आए होंगे। और चूंकि हम म्यूजिकल आज कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्यों ना हिंदुस्तानी फिल्मों से कुछ बेहतरीन पुराने गाने भी सुन लिए जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं रिमेम्बरिंग गीता बाली, उनके बड़े पुराने 1951 फिल्म अलबेला से। ये गीत शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के।

ये था फिल्म अलबेला का एक गीत। ये फिल्म आई थी 1951 में। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सी रामचंद्रन, गाने वाले थे सी रामचंद्र और लता मंगेशकर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे भगवान दादा और इस गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। अब गीता बाली पर एक और गीत हम सुन लेते हैं देवानंद जी के साथ, फिल्म जाल, और ये गाया है हेमंत कुमार ने और डायरेक्टर इस फिल्म के थे गुरुदत्त।

ये अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। फिल्म थी श्री 420, आपको याद होगा। इसमें काम करने वाले थे राज कपूर और नरगिस। इस गीत को गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे शैलेंद्र ने।

मित्रों, फिल्म चोरी चोरी भी बड़ी मशहूर हुई थी। ये 1956 में फिल्म आई थी। इसमें भी काम किया था नरगिस और राज कपूर ने, और गाने वाले थे लता मंगेशकर और मन्ना डे, बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। आजा सनम मधुर चांदनी में हम।

दोस्तों, समय दौड़ा चला जा रहा है। आशा करता हूं कि आज की हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। 8 बजने वाले हैं और मुझे अब यहां आपसे विदा लेनी होगी। अगले बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर रेडियो हारमोनी के साथ मैं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम और शुभ रात्रि, और हमारे साथ बने रहें क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम है लैटिनो अमेरिकन आउरा।